0: विश्व तंबाकू निषेधाधिवास यही हमारे इस घंटे के विषय। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वाकिया सिगरेट के पैकेट पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। सिगरेट मुंह से लेकर पेट, जिगर, गले जैसे कई तरह के कैंसर का कारण बन सकती है। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेधाधिवास मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के विषय में सचेत करना है, साथ ही इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेधाधिवास की शुरुआत की थी। कई लोग सोचते हैं कि जो लोग धूम्रपान करते उन्हीं को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि उनके साथ बैठने से हर साल लाखों लोगों की मौत धुएं के कारण होती है। इतना ही नहीं, वातावरण में सिगरेट के अवशेषों में 225 से ज्यादा घातक रसायन स्मोकिंग करने के कई घंटों तक रहते हैं। जब आप सिगरेट जलाते हैं तो माचिस या लाइटर और सिगरेट दोनों का धुआं मिलकर नाक की बाहरी परत को डैमेज कर देता है। सिगरेट के हीट से मुंह, चेहरे और नाक के स्किन पर असर पड़ता है, होंठ काले होते हैं और जोड़ियां पड़ने लगती है। जब सिगरेट का धुआं मुंह में जाता है तो वो दांतों के एनामल पर जमा होकर उन्हें पीला करने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग तंबाकू के वजह से मौत के शिकार बनते हैं। इनमें से करीब 20 लाख लोग दिल की बीमारियों से मरते हैं। रिसर्चरों ने तुलना कर देखा है कि एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीने वालों की तुलना में हर दिन एक सिगरेट पीने वाले पुरुषों में भी दिल की बीमारियों का जोखिम 48% था। अभी इसके कारणों का पता तो नहीं, लेकिन महिलाओं में ये थोड़ा कम यानी करीब 31% था। हेंगशा ने कहा, इसके पीछे जैविक अंतर या फिर जीवन शैली में फर्क हो सकता है। तश्किसा में अविसेना नामक ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक भारतीय स्नातक श्री सरवार खान के कहना है कि धूम्रपान हमारे शरीर में और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, और उसकी राय इसके बारे में ऐसी है।
1: सिगरेट पीना सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है। धूम्रपान चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, हुक्के की शक्ल में हो, बीड़ी की शक्ल में हो या सिगार की शक्ल में हो, धूम्रपान वो बहुत ही नुकसानदेह है। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान को फेफड़े में होता है। सांस लेने की तकलीफ़ होती है, फेफड़ों की नसें जो है, नालियाँ जो होती हैं फेफड़ों की, वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। फेफड़े का कैंसर बहुत देखा गया है। जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनमें देखा गया है कि फेफड़े का कैंसर बहुत होता है। गले का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने वालों को, मुंह का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने वालों को, इसलिए सिगरेट से दूर ही रहना चाहिए। सिगरेट में होता है निकोटीन, निकोटीन जो हमारे सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। सिगरेट किसी भी शक्ल में हो वो बहुत ही नुकसानदेह है, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, किसी को भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट से दूर रहना चाहिए। खास तौर से महिलाओं में, महिलाएं वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो उनके घर में पल रहा बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए घर में पले बच्चे के ख्याल के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से खुद भी नुकसान होता है और पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, इसलिए धूम्रपान से दूर ही रहना चाहिए। धूम्रपान कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज हम जगह जगह पर देखते हैं इश्तिहार लगा होता है कि धूम्रपान निषेध, बसों में, ट्रेनों में और भी जगह पर, खाने पीने की जगह, बैठने की जगह जहाँ पर लोग बैठते हैं या पार्क में लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, क्योंकि धूम्रपान जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। हमारे सेहत के लिए, हमारे सेहत के से खिलवाड़ होता है ये। इसीलिए धूम्रपान से दूर रह करके, सिगरेट से दूर रह करके हम अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं। हम अगर सिगरेट से दूर रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, जिसमें खासतौर से फेफड़े की होने वाली बीमारियां हैं। इसलिए सिगरेट से दूर रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।